इस जोगी राज दे सामने लोहे दी संदूकड़ी पई है। हां बादशाह, ते उस वक्त रुपये जड़े सन ए कागज दे नहीं सन हुंदे, पारे हुंदे सन। ते साहब जी कहन लगे, मरदाने जदों कोई आदमी गोलक विच रुपया पांदा है ते खड़ाक ज्यादा हुंदा, ते जोगी राज अंदाजा लगा लैंदा है कि हुण किसी ने रुपया पाया। रुपये तू घट पैसे पाए, घट खड़ाक होया, ते अंदाजा लगा लिया कि इन्ने क पैसे पाए ने। मरदाने है, इस जोगी राज ने अखां तां बंद कीतियां ने, पर ए परमेश्वर नाल नहीं संदूखड़ी दे नाल जुड़िया होया। ए तां अखां बंद करके पैसे दा हिसाब पिया लगांदा है कि संदूखड़ी विच किन्ने क पैसे जमा हो गए। मरदाना कहन लगा, महाराज ये किस तरह हो सकता है? साहब जी कहन लगे, जे देखना है ते जेड़ी संदूखड़ी एदे सामने पई है चुक के एदे पिछे रख दे। मरदाना उठे है, उस जोगी राज दे सामने संदूकड़ी चुकी ओदे पिछे रख दिती, अपनी जगह ते आके फिर बैठ गए। थोड़ी देर दे बाद उस जोगी राज ने अखां खोलियां, बैठिया लोकां वाल देखिया तां ए गल कही, ऐ संत जनों, आज हम आप लोगों को तीनों लोकों की बातें सुनाएंगे। आज हम ब्रह्मपुरी में गए, वहां वेदों की कथा हो रही थी। फिर हम विष्णुपुरी में गए,

ध्यान जोड़ो ते लाओ पता तुहाडी संदूकड़ी किथे है। ते गुरु साहिबां ने उस वक्त ए शब्द उचारिया, काल नाही जोग नाही नाही सत का डब, थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग। कोई जोग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच नहीं, इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट हुंदी जा रही है, ए सारा संसार डूबता जा रहा है। कल मैं राम नाम सार है भाई, पखंड छड दियो। कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने सहायता।

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना अखी ता मीठे नाक पकड़े अखां बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण।

पाछे कछू ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई होई है। पिछा देखे है, इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नू क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नू कहना है।

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं, कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे, भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी। एक गल

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया। तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया। एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई।

जंगल विच लै गए ने। उथे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओ खो लिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तां संत समझे पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उथों भजे। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई ओ संत नहीं, पता है ओ कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान

मैं ता मथा टेकिया कि ए ता पहुंची हुए संत ने। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनु देख लिया ते उची सारी अपने साथियां नु क्या नारायण मतलब के कोई बंदा आया ओदी आवाज सुन के दूसरे ने क्या दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगती ते तीसरे ने क्या बिंदरा बन वो कहन लगा कोई नहीं आ जान दियो जंगल विच ले जा के इनू जानू मार के ते लुट लवांगे ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोना ते काम इन्ने माड़े ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इना लोकां बारे इं बयान कर

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी बग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

बसुधा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने लकड़ा भी धो के बालदे ने पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

अपराधी ने मुखों अपरस कहावे पर लोकां दे कोलों अपने आप नूं बड़े वड्डे बड़े उच्चे ते सुच्चे पंडित अखवांदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेकी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तो आड़ा मन नहीं जुड़ता ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर ए खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले तां लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

दो सोने दे पैसे दिते, आख्या जा एक पैसे दा झूठ लैके आ, एक पैसे दा सच लैके आ। मर्दाना बाजार विच पुछदा फिरदा है भाई, एक पैसे दा सच चाहिदा है ते एक पैसे दा झूठ चाहिदा है। कई अनभोल मनुख अज्ञानी पुरुष माहौल भी करदे हन भाई, ऐसी वस्तु कदी बाजारा विच विकिया ते फिर ये है ही की, झूठ की है ते सच की है ये कौन दस सकदा है। ता एक जिस मनुख दे पूर्वले कर्म भगती भाव नाल भरपूर सन, इसका नाम सी मूल चंद। उदे पास जदों मर्दाना गया, आख्या की चाहिदे, मर्दाने आख्या भाई एक पैसे दा सच चाहिदे, एक पैसे दा झूठ चाहिदे। ता मूल चंद ने एक कागज ते लिख दिता मरना सच है, और एक कागज ते लिख दिता जीवना झूठ है। जे कोई कहंदा है मैं सदा रही संसार विच रहना है, एदे वर्गा झूठ नहीं, ते जे कोई कहंदा है भाई ए पता नहीं किस वेले अकाल पुरख दा सदा आ जावे, हम आदमी हां एक दमी, ते जाना पवेगा ए शरीर ता मिथ्या है, ए ता एक दिन मिट्टी दी ढेरी होना ही है। जे कोई कहंदा है भाई ए शरीर मिट्टी दी ढेरी होना है, एदे वर्गा कोई सच नहीं। तो जीवना झूठ है मरना सच है, इसे लिए हजूर कहंदे अन्ना भाई ए मनुखा जन्म जप जप के सफल कर लो, पता नहीं दरगाह तो कदों सद

बहु परपंच कर पर धन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रहा है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत न बेड़ा तेरे जी पै लीजे। एदे अमोलक स्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़िया है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई, जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले दे दियो। तां जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होन लगे। तां कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन की कमाई दे बदले मैनू एक श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे, मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह

अपनी लज्जा बचाउन वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित होके त्याया उसनु। ता फिर जो परमेश्वर दा नाम जपदे हन उना दी लज्जा वाहेगुरु आप रखदा है। साथ संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहते हैं, ओ गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी का, जदों थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचया तो उसके बदले भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भेटा दे और सुदामे दे प्यार दे सदके उसनू दुनिया का बेअंत धन बख्श दिता। सुदामे नौ नीतियां 18 से

श्रवण सोए सुन निंद बीजा, रसना सोई लोभ मीठे साद, मन सोया माया विस्माद।

को एक पुत्र जिता है और उसको कोई ना कोई रोग लगा ही कोई उसको झला कहता है कोई दीवाना कहता कोई बावला कहता मैं चुप कर गया मैं खामोश हो गया लोगों के बच्चे खेलते हैं पर मेरा लाल कदे भी नहीं खेल होर बच्चे माता पिता तो आके चीजा मंगते पर मेरे नानक ने मेरे को कदे भी कुछ नहीं तीन दिन हो गए प्रसाद नहीं छके पता नहीं किड़ा रोग अंदर जाके सुता है तीन दिन तू मेरा लाल भोजन पाया ही जे धन गुरु नानक पातशाह जी ने भोजन नहीं छके ता ममता दी मारी हुई मां माता तृप्ता रे मुंह च बुरकी नहीं पाई जिस मां का पुत भुखा सो जाए उस मां नू नींद नहीं दी पुत सो गया है मां जाके उठा दी काका भुखा क्यों सो गया एक बुरकी तो मुंह च पाए मां दी आंदरा ठर जाए बच्चा रज के प्रसाद छक लवे मां पहले रख ते मां का प्यार माता प्रीत करे पुत माता तृप्त इना ख्याल इना विचार क्योंकि माता तृप्ता हजूर नु पुत्र ही सुन गुरु नानक एक और वेखण वाली वखो वक तृप्ता ने जाने सुत कालू ने जाने पुत लालू भतीजा जाने मूले जाने ए जवाई चंदो रानी जाने सरबंधी जय राम साला जाने पर बेबे नानकी ने जाने रब रूप मेरो भाई श्री चंद लक्ष्मी दास ए जानत निज बाप कर पराए बुलार को प्रतीत भली आई है श्री गुरु अंगद साहब ए जानत अकाल रूप ते मूर्खों ने जानिया गुरु नानक को जिन्हां नूं भावना दी रोशनी दी जिन्हां नूं भावना दी लाइट नहीं मिली उन्होंने मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी नूं कुराई हटी भावना सब तो वड्डी जितने तक सानू अपने गुरु से पूर्ण विश्वास नहीं आया उतने तक अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तस्मर विश्वास ही वड्डी विश्वास ही सब तो वड्डी असी केवरी आके गुरुद्वारे आके गुरु साहब के मथा भी टेक पर मथा टेक के भी सानू पूर्ण विश्वास नहीं आता ये विश्वास आ जाए तो हुक्म क्यों ना मनी हुक्म नहीं मन मथा जरूर टेक दे पर हुक्म मथा टेके है गुरु मथा तो तेरे के टेकांगे पर तेरा हुक्म नहीं मन
ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਵਚਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ

गंधारि सिहुति उचारि तना श्री पांचो गाई माल रा कौशक संग लाई मारू मस्यांग में बारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौ खटियो पौरा नद गाए अस्त माल कौशक संग लाई पुन आयो हिंडोल पांच नार संज्ञा सत उठे तान कलोल गायन तार मिला वहे ते लंगी देव क्रियाई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लय पार जा संगलाई पांचो वार जा